अवधपुरी रघुवंश में फूटी के कैसी जा रानी, अवधपुरी रघु

उठा साटका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी।

रे अमरो नाथ की अमरो कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

हरि जगत जगतार भजन करो, हरि जगत जगतार भजन

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरो भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरो भौजी के पास।
3: बैरो भौजी,
4: लालाजू, ओ लालाजू।
5: हाँ भौजी, बता क्या बात है।
4: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
5: ले भौजी, अब तो नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
4: का कह रहे, नेक कठिया के बोलो, सो भाई बात।
5: अरे भौजी, तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए, भौजी से बेसी तो लड़त रहता अपन।
4: अरे लालाजू, मैं जाके भी आई थी कि नेक तुम मे संगे चलो।
5: तुम्हारे संगे चलो?
4: हाँ।
5: काहे के लाने?
4: मैं हारे चलू ने।
5: हारे चलो?
4: हाँ।
5: ऐसा काहे ते हारे कि हम हारे चले थे?
4: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लो, जरूरी काम है मुझे।
5: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे।
4: पढ़ रहे बात में पढ़ ले, जो आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
5: ऐसी क्या बात है, बता नहीं बता दे तो।
4: का कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है।
5: अरे जा कह रहे भौजी, के ऐसी क्या बात है, तो ही बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है।
4: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, नेक मुझे का को तो अच्छी सी बता दूं, नेक मैं का डाल लूं ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मैं जो दवाई ले आत होंगी, लेकिन इनसे का को मुझे कछु फायदा थोड़ी न पड़ रहा है गो, और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई आत हुई तो तुम बता दो।
5: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारो नाम क्या
4: भी। अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेत होंगी, तुम्हें कछु नहीं आऊंगा।
5: अरे आऊ तो है, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थे एक बात है।
4: अच्छा तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखे, तुम्हारी कैसी है।
5: हाँ, हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी
4: दवाई देते ही।
5: चलो देखे यहाँ तो।
4: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
5: तो देख भौजी, देख जा दीदी आसों की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ भी जाने तो खेती करने तो जिनमें देखो जी, आजकल की दवाई चल रही है अपनी रासायनिक दवाई, यही देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
4: का कह रहे लालाजू, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही।
5: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने, पढ़ भी जाने और खेती भी करने संगे संगे। देखो अब किसानी को गांव गाड़ा को काम है तो सब करने आते ही।
4: हाँ वो तो यहाँ है कि लाला जी मैं जा के रही तुम तो का डारा दिन में देखो तुझे भटन में कैसो कीरा मीरा सो लग रहा है वो और काकुती आने से लग रहा है का डारा तुम्हें।
5: अरे भौजी दवाई तो मैंने मुलकन दी अपनी बाजार से ले आ गए।
4: लाला जी मैं तो जा से आई थी देखन मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो।

0: कौन लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ। मैं जय वहां ने लालाजू की फसल तो देखे अब कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी तो ऐसी बातें कर रही, कौन मेरे घर है बन नहीं दवाई। अब मैं तो बाजार से लिया था ही का, तुम जाने का करा था जुम्मून, मैं तुम्हें देखे हूँ कैसी तुम ज्यादा वो बता रही। तो
0: अरे चलो लालाजी तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी। मैं तो जबकि देसी दवाइयों को इस्तेमाल करे थे, मैं तो बड़े वास आई थी। अरे मेरे लालाजू की अच्छी उम्दा होते पढ़े लिखे है, अच्छी दवाई ले आते।
1: अरे भौजी अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय को दिक्कत करो। जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंगन में, दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच तू
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी
1: भाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी ते तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे ते अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ माँ, मैं कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर है बनाऊ तो, और अपनी बैगन में वो चाइजों सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत हूँ।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही हो जी।
0: कहा कह रहे लाला जू काय को मस्करी कर रही
1: और
0: तो मस्करी दिखा रही।
1: और कही तो रही घर बना दवाई बना वो हंसी के लिए था।
0: हाँ लाला जू मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते होंगी, रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भाजी चला ही नहीं आती यार, देखो
2: चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: ना ये कहो कीड़ा लगो कीड़ा के लाने और जाना वो थो तो मैं मुझे तो विशेषज्ञ बुला लेते हैं तो उनसे पूछा की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं
1: है?
0: जो अपनी चीजें है प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो अब तो चला ही नहीं आये तू हारे।
0: चलो देखो अब देखो लाला जी जो तो लगो मे बैगन और जी अभी मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
1: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
0: कहा कह रहे भौजी तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जाए, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी। मैं तो घरे बना था अपनी सब,
1: लेकिन भौजी जी टपक जाए में मटका धरे जे का धरे चार पाँच।
0: कहा कह रहे लाला जी टपक जा में लोटा धरे।
1: लोटा नहीं भी मटका धरे बट तू टपक जा में।
0: हाओ लाला जी मैं मटकन से मैं मटका खाद बना थो।
1: मटका खाद
0: हाओ
1: बा कैसी बना
0: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है। मैं अपनी सब देसी खाद डाल रहा था उनमें, जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वो हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी हो थे।
1: हाओ मैंने पढ़ो तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
2: अच्छा
1: लेकिन तो मैंने जसूची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सकते हैं। तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तू जरूर सीख भी आऊँ दवाई बना।
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग ले अभी खिलाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरू भौजी ने कितने अच्छी तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरू भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार

0: चार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवाश्म में युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
2: ब्रजनंदन पाल कैना से।
3: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
2: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है, उसमें अपन को फायदा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको तोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
3: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
2: नहीं कह सकते।
3: नहीं कर सकते, चलिए। और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
2: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी आय, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
3: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए।
4: सुरेंद्र पाल कहना।
3: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
4: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गए, उड़द हो गए, चना हो गए, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
3: जी जैविक खेती के उत्पादन।
4: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
3: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
4: अपने हिसाब से ये है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
3: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
4: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
3: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
5: हमारा नाम है रईस यादव, लिधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
3: अच्छा रईस जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
5: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो भटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है मतलब गोबर खाद। अच्छा, इससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
3: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
5: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, और गोबर जो मान है गौ माता का ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है फिर।
3: अच्छा, जैविक खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या आपके हिसाब से, क्या लगता है?
5: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है
3: आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
5: मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
3: अच्छा
5: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल, बढ़िया टुकड़ाई चलेगी उसकी।
3: धन्यवाद।
6: ब्रज किशोर कुशवाहा।
3: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
6: हमें पता नहीं है सर।
3: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
6: नहीं है जानकारी।
3: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
6: अब जी हमें पता नहीं है सर।
3: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
7: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
8: जीवन भर सुख दे।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विषय विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थाई कृषि है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें,
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू

0: स्तर, जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी, और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा
1: फायदा
0: नहीं
1: नहीं होता
0: दिखेगा,
1: है।
0: लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
1: सर, आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, सर इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
0: जी देखिए, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद हैं उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातुएं हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है। तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
1: जी, अगर सर अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है? क्योंकि अभी अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
0: इसके अनेक लाभ हैं, और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी,
1: जी
0: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा।
1: जी
0: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव होगी, और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब आप टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
1: जी सर,
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही,
1: जी
0: साथ
1: सर,
0: साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि
1: जी
0: अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों
0: जी
1: के उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को

0: हमारा नंबर जो है 92 19 20 77 49। श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारागाम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों, आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था। और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

0: स्कूल कॉलेजेस सब कुछ खुल गए हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं, उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहाँ पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं, उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए, तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं, तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर, जानना चाहेंगे।
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर, देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि 12th के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, IAS IPS की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए सर?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है।
0: जी
1: बिल्कुल, मैं बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जोड़ा अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विवेचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के ना सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर कि प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे
0: जी
1: हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं,
0: जी
1: कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें,
0: जी
1: या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है
0: जी
1: और आप के पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो
0: जी
1: आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक, मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है
0: जी
1: जहां पर ना

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो

0: सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं, और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल है, छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल्स प्रोग्राम्स भी आप वहाँ देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी। तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम, जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहाँ पर आप जो अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं।
1: बिल्कुल
0: अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में ही हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं। तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य, चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल में खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खास तौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से
0: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी आपने
1: जी
0: युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है, मैं इस बात पर आने ही वाला था।
1: जी
0: हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं, उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन MCU.AC.IN वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निमाड़ में हमारा खंडवा परिसर है, जो और इसी तरीके से हमारा MCU दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में, और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स, जिनको हम UG पाठ्यक्रम कहते हैं, वो NEP आधारित 4 वर्षीय हमारे UG पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास BA जनसंचार पाठ्यक्रम है, और साथ ही BBA मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास BA जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है, जिसको हम BA JCW कहते हैं। इसके बाद हमारे पास BA इन मीडिया रिसर्च है, BA इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, BSc फिल्म प्रोडक्शन है, BSc मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, BSc एनिमेशन में हमारे पास BA मास कम्युनिकेशन है, BA इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने BA हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि NEP में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है।
1: जी
0: तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था,
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में
1: जी
0: भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी,
1: जी
0: हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उनके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमले और बीले पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच बीच में विशेष व्याख्यान है, मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशंस हैं, वहाँ की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे,
1: बिल्कुल
0: और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास, 360 डिग्री उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में
1: जी
0: आवाज के आरोह अवरोह को,
1: बिल्कुल
0: वॉइस
1: सर
0: मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वर्ड्स को, क्योंकि कानों का माध्यम है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर
0: इसमें आप रिपीट नहीं करें, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीक चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको
1: बिल्कुल सर
0: दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है। जो
1: बिल्कुल सर
0: प्रिंट माध्यम है, रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है,
1: जी सर
0: तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमिडिएसी का महत्व है,
1: बिल्कुल सर
0: इसमें कोई भी अंतर वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: सर
0: ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो
1: बिल्कुल
0: अपने
1: सर
0: ऑफिस में, यात्रा के दौरान,
1: जी
0: कार चलाते हुए,
1: जी
0: अपने दफ्तर में, इवन
1: जी
0: गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई
1: बिल्कुल
0: रेडियो
1: सर
0: माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम, जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है, अगले 3 हम लोग 97 वर्ष रेडियो
1: बिल्कुल
0: प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और रेडियो
1: जी
0: माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित
1: जी सर
0: करने में आपने मुझे आमंत्रित किया,
1: जी
0: उसके लिए
1: सर
0: आभारी हूँ,
1: जी
0: और उन
1: सर
0: सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर इसमें से भी 2 प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष

0: लगता है, तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें, ये सब।
1: जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो
0: जी
1: उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला
0: जी
1: चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहाँ पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है, और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहाँ पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ
0: बिल्कुल
1: पर प्रस्तावित हैं, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू
0: प्रतिभा है
1: रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है,
0: जी
1: तो
0: सर।
1: उससे प्रेरित होकर अभी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ, तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात समझ में आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेके
0: बिल्कुल सर,
1: और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफ़ी मांग है, तो
0: बिल्कुल
1: हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है,
0: जी
1: अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: सर,
1: सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे, तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते
0: बिल्कुल
1: का,
0: सर,
1: 15 दिन का, जैसा
0: बिल्कुल
1: भी आप उपयुक्त समझे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम
0: जी सर,
1: उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा,
0: बहुत
1: और
0: बढ़िया,
1: रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार
0: बिल्कुल
1: करते हैं, और
0: सर,
1: हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो
0: बिल्कुल
1: हम
0: सर,
1: लोग को बहुत खुशी होगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर, और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुअन को हम यही कहूँ चाहो कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नू रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें,
0: बिल्कुल
1: यही
0: सर,
1: बात के साथ, जय राम, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी, हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो।

साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49 और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के पास ओरछा। और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

नीति अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसा सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी, और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी

हो, न देखो भी है तो या नहीं देखो तो, काहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है, और फिर देख भी की तो बात ही अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपन और देखो कि आज जितनी भी कहानी अपन और ने स्त्री में सुनी हैंगी, उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या को के जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओर ने देखे आती, तो लड़की को देख भी की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे, और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करते हैंगे, हम आपको सीधो ले चलते हैंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहे हैंगे। तो चलते हैंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहा।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौराहे है, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में कौन है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते हो?
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम
1: हो? वहाँ पे तो चौका वर्तन करते सब कहते हो, जगह जमीन नहीं आती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: मैं पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा के लिए का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपये दे देती महीना भर में।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहता
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी
1: है? हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रहेगी, 60 साल में।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो हमने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटो जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलता ही खाता
0: रहा। हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, बस यही खेल खेलते थे। और चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा का
1: साउंड को मुझे चपेटा खेल।
0: अच्छा,
1: जी खेल रहा है।
0: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ, खेलत में गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा, गीत ही नहीं याद है?
1: नहीं,
0: तो पहले तो गा सुन आप।
1: अब भूल गए, अब तो बुढ़ापो ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
1: बुढ़ापो का नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती है?
1: कौनो नहीं गाते हैं,
0: आप गाते नहीं। अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियां को अब जाने कहाँ कहाँ गई। को
0: तो नाम को पता हो जाए?
1: काऊ को अंगूरी ना, तो काऊ को पुष्पा ना, तो ऐसे सबके नाम आते सबके। कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते
0: इकट्ठे हो जाते हैं।
1: कभी कभी इकट्ठे हो जाता, खुशी तो जो से अपन लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता।
0: अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे? मतलब पहरा तो कहा थे, कपड़ा कौन कौन से चलाते?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी हती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहरते और फिर आके पहरते और फिरा करने मिली तो बिस्कुट पहन लेते हैं, ये पहन लेते हैं और हम तुमने फिरा के दे दें तो भी पहन लेंगे और यही पहरा।

0: जी, मतलब कोनो अलग से नहीं
1: हाँ,
0: जी
1: कोनो अलग से नहीं हतो।
0: अच्छा तो अब हम बाप से बात करें, आपकी शादी कितनी उम्र में भाई?
1: हम आई अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन कितने उम्र में हमारी भाई आती,
0: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी,
0: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा जी, से आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपने देखा तो
1: हाँ?
0: पहले से देखा तो
1: हाँ? नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देते
0: हाँ,
1: पहले ना को मोड़ी देखा तो ना को मोड़ा देखा।
0: अच्छा
1: बेटेक से तो आते ही हमारे बाप माताई ने 8-9 साल के साथ हम 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा।
1: तो जिन जिन को काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तुम्हें 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका। उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया पूर्ण में दाए थे।
0: अच्छा
1: तो वही बताई नहीं होते कई में करता
0: 500 रुपया में ब्याह होगा
1: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे दे वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा।
0: अच्छा, अच्छा।
1: बड़े बड़े सेठ लोग
0: तो
1: सही से वहाँ ब्याह होगा।
0: अच्छा जब आपकी ब्याह होगा इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं राधापुर में भाई है
1: ना? हाँ राधापुर
0: में ससुराल है आपकी। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगी, जैसे पहले दिन तेल मंडप
1: पहले पहले मंडप तेल भाव फिर मंडप भाव फिर टीका भाव।
0: अच्छा 3 ही दिन को ब्याह हो
1: तो? हाँ 3 दिन को हो
0: तो। बरात 3 दिन मिली रही थी
1: नहीं? एक ही दिन नहीं 3 दिन मिली रही थी बरात
0: तेल
1: आ जाती। नहीं टीका के देना।
0: अच्छा।
1: और फिर भावर मावर बरतती फिर वो देना थोड़ी जाती बरा दूसरे दिन जाती।
0: दूसरे दिन जब जयमाला डरी तो आपकी
1: जयमाला नहीं डरी
0: पहले
1: हमारे जयमाला नहीं डरी बहन हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
0: अच्छा।
1: और जो तुम जो होट पर लाल बाको में लाल।
0: अच्छा जो सब पे लाल तो मतलब जयमाला नहीं भेजी फिर क्या सो गया मड़वा की तरह सीधो
1: ऐसे ही मड़वा जयमाला नहीं लड़का मड़वा घाला ना सो चावल मार दे।
0: अच्छा चावल जी का घाले जाता आपको कुछ बताओ हो तो
1: का है? नहीं बता हमें नहीं बता।
0: अच्छा चावल को कुछ पता ही नहीं है सब घाल रहे थे आप
1: तो मड़वा के नाचे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने
0: फिर उसके बाद
1: बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो फिर
0: भावरे काका चढ़ो तो आप
1: हमें पेजना चढ़ी थी 1 किलो के वो खंगवज्जा
0: 1 किलो की पेजना
1: हाँ 1 किलो के पेजना वो खंगवज्जा वो जो इतने पैर थे पहने थे हाँ बेचड़े थे।
0: अच्छा
1: तो अब रखे हो आप हाँ बहन की बात
0: छह
1: लड़का होगा 6 लड़का के ब्याह कर ले।
0: अच्छा
1: से
0: सही बात है। अच्छा आपकी विदा काय में भाई थी?
1: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा
0: हाँ हाँ
1: भाई में भाई थी विदा
0: उतर से इतनी तक
1: जहाँ नहीं उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
0: बैलगाड़ी
1: में ऐसे बैठ जाते लेकिन विदा होके हमारी गाड़ गई से आई थी।
0: अच्छा बैलगाड़ी
1: कैसा लगा बैलगाड़ी से होती पहले विदा सवाई की होती हमारी का पहले जेते वाहन कहाँ थे और चा तक निगज जाते खेलार तक निगज जाते अब तो एक कदम नहीं निगरा आदमी
0: अब तो अगर उधर भी जाना
1: अगर तुम्हें कारस दे उन्होंने जाना तो गाड़ी
0: से
1: जाना
0: सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आई तो इतने ससुराल में कुकू मिलो आपको
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
0: अच्छा आप क्या में नंबर की है
1: हम दूसरे नंबर के नानी ले दो
0: लंदन की शादी हुई
1: हाँ।
0: अच्छा शादी के बाद
1: बड़ी हती
0: बड़ी हती। अच्छा तो फिर आपके इतने का रस में भाई मतलब कंकन छूटा
1: कंकन छूटो हाथे लगे थे 2-3-4 दिन रहे थे फिर चले गए थे।
0: अच्छा, खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
1: खिचड़ी बनाई थी
0: तो आपने खुद बनाई थी?
1: नहीं बना पाई थी हमने हमारी जेठानी ने बना दी थी।
0: अच्छा।
1: और चमचा से तरवा दी थी
0: नाम होगा तो
1: हाँ और अंडर द्वारे में और अंडर वा दे।
0: अच्छा और अंडर वा दे जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई और सबने खाई तो फिर का करने मिलो तो
1: हमें नहीं एक कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
0: वा देने
1: हाँ
0: उल्टो नहीं हो रहा
1: पहले देता ही हते अबे भी देता मोरन के जैसे खिचड़ी बनवाओ तो चूल्हे न रखवा बहू से सास लेते।

0: पैसा,
1: अच्छा,
0: चाहे दस धरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ एक रख दे, लेकिन वो सास ले और तो ओरेन पे रखत बहु तो बेबी सास ले।
1: अच्छा,
0: जी की सास ना हो तो जेठानी ले।
1: तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास, तो आपके समय में खुलती?
0: नहीं, हमारे समय में नहीं खुलती,
1: नहीं खुलती। अच्छा, आपकी
0: जो छोड़ा खुलते, जो छोड़ा
1: खुलती,
0: जो छोड़ा
1: भी पैसा
0: सास खोल सकती है,
1: खोल सकती
0: है, खोल सकती
1: है। तो कम हाथ हो तो मतलब
0: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास, कछु महत हो जे देखो।
1: अच्छा, आपको नहीं पता
0: ना, छोटे आते से कछु दे आना
1: समझ नहीं आते होते। फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में, फिर कैसे काम कराती? जेठानी के संग मिलकर कराती या लड़ाई होती?
0: जेठानी के संग कराते, लड़ाई का क्यों होती?
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप?
0: नहीं, हमारी नहीं भाई, जेठानी
1: सास से
0: ना, सास से भाई कब होना,
1: काय नहीं होती। आप सीधी आती के दो जने
0: भी दो ही एक से आते मिल के कर लेते हो बस, सबने फिर से आने होगा, ऐसे सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा, और सासरी में का काम होती आपके? खेती,
0: खेती होता ही, रात से खेती होती।
1: अच्छा,
0: पहले मोटर कहाँ थी, रात ही से खेती होती, से रात चलाते रहते।
1: अच्छा, और जैसे जब खेती की आपने बात करी है कि, तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती?
0: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से।
1: कितने बजे उठाती
0: है आप? चार बजे उठ जाते, चार बजे से पी सकते, सो पाँच छह किलो नाच पीस लेते।
1: पाँच छह किलो रोज पीस लेते?
0: हाँ, रोज। इतना ही जेठानी पी सकती,
1: तो भी कभी पी सकती आप? जैसे सुबह से उठ के पी सकती
0: हो? चार ही बजे से भी पी सकती।
1: संगे पी सकती
0: हूँ ना, कभी संगे कभी अलग अलग पी
1: सकती। अच्छा, फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम?
0: फिर गोबर मोबर डालते।
1: कितनी गाय भैंसे होती
0: है? पहला दस बारह गाय होती, गोबर मोबर डालते, झाड़ा झूरी करते, फिर एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा, ऊपर वो काम कर लेती।
0: तो फिर कुबा पे आठ बजे तक निकल जाते, सो रात चलाते दिन भर।
1: अच्छा, वो हाथ से बहाने आते?
0: नहीं, बैलन से,
1: बैलन से चलते।
0: घर यहाँ नहीं आती लोहे, सो वही चलाते रहते, कब हम सात जेठानी चलाती, कब हम चलाते रहते।
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आप? नहीं, हाँ। अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
0: हमारा छह लड़का।
1: छह लड़का और लड़की?
0: लड़की नहीं है एक।
1: लड़की नहीं है एक। तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो खूब?
0: हाँ, काहे को पढ़ाओ, मैं परेशानी हती से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा,
0: पाँच पाँच पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा, सरकारी स्कूल में। तो अब सबकी शादी हुई?
0: हाँ, सबकी हो गई, सब सब नाती ना तुलन की हो गई।
1: अच्छा, नातीन की भी हो? कितनी नाती है?
0: छह नाती है, छह नातने हैं।
1: बिला
0: आती
1: को मतलब बिला बड़ो परिवार है?
0: हाँ, तो छह लड़का है, तो दो दो हैं सबके।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और एक के चार हैं बड़े के, तीन मोड़ी हैं, एक मोड़ी तो आप बिरोबर हो गई, तीन ना ना मोड़ी के, दो मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी, एक के मोड़ा होगा, एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है, मोड़ा है वो।
1: बहुत बड़ा परिवार है आपको? अच्छा लगा था, तीते भान पे और सब जने आ जाते हैं तो और अच्छा लगा था ये ना। तो आप सुवाटा नहीं खेलती हो?
0: नहीं।
1: कैसे खेलती आप अपने?
0: सुबह तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस पे खेल
1: गाना भूल नहीं आते, याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
0: 20 साल से ज्यादा हो गई।
1: जैसे आपने पढ़ाई पांच तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसे लग गई थी मतलब?
0: पहले उनने इन्हें चार जन्म के कागज दे थे भर के, तो सबने 200 रुपया में लगते, तो सब जना ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने।
1: हाँ।
0: हमें नहीं करने, सो फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह, कभी ज्यादा भी हो सकत।
1: हाँ,
0: 350 में लगते, हमें 200 रुपया।
1: धीरे धीरे करके
0: फिर हम इनके ससुर बोले लग जाओ हम दे दे, वो करें तो मैं दो चार पहली नाच खावे के लाने बज का कर। इनके ससुर दे देते दो चार पहली नाच, हम पानी भरे आते इनको, तो फिर लगे रहे इनके, तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो, हमने बना तो नहीं अभी।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब से पानी भर उनको।
1: अच्छा,
0: तो लग खावे पीवे की परेशानी से, कि अब जैसे नहीं आ तो जी दे तो सकते खावे, और नहीं करते तो को दे रहो।
1: सही बात है,
0: दे रहो तो को भी ना करे।
1: और आज आपको कितनी मिल जाती, मतलब आपको घर चला भी लाके मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 हो गए ये दो तीन महीना, नहीं 2,500 हो
1: जाते,
0: फिर 350 है हमारे, फिर 1500
1: भाई। अभी तो फिर धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके।

0: पड़ी है, आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
1: हम जो खेती किसानी सीखी हो जा आंगनबाड़ी कर ली पैसे जाकर।
0: नहीं, आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें?
1: जब पहले तो महत्व देखो, आप सोच रहे हैं आदमी के पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे हैं।
0: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए।
1: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़वे की का सोच रहे बताओ?
0: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही
1: है,
0: ड्रेस मिल रही,
1: लेकिन नाम मिल रहा है पहले का मिल रहा?
0: हाँ, पहले नहीं मिला तो, लेकिन अब मिल रही तो अभी के लाना पढ़ाई चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
1: और का कहना
0: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
1: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब आठ आठ पढ़ी, नातने नाती पढ़े
0: पढ़ाना चाहिए।
1: हाँ, सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो, को हुआ बड़ी बड़ी हो गई सब सात सात आठ आठ में करके छोड़ दो, ब्याह कर दो नातन की।
0: बहुत बढ़िया,
1: आप दोनों को कर दो, अब दोनों ही पढ़ रहे हैं।
0: चलो बढ़िया माँ, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये लाने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, जी सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ो महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है गो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगत हैंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेने पड़ता। तो देखो अब अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को। लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है गो, इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे, या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप और सुनबो चाहतेंगे, तो ये लाना हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के, या फिर

के माध्यम से। पते के लाने हमारो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे। तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत। अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार और चला चला सुनो आप ये गीत खो जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के लिए फसल में काफ़ी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है। प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है, खैर। लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और ख़ास तौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीज़ें रहती हैं उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा, इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसमें मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफ़ी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला आइट्रेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं, तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
2: बिल्कुल, तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
1: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायोबेस भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है विच इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन अ लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
2: जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसे कैसे बेहतर है ये?
1: पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉर एवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है वो सारे सिंथेटिक वेस्ट में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पॉल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो नेगेटिंग इंपोर्ट रिलायंस।
2: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसीलियम को यूज करके और किस

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों

0: तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
1: हम जो मशरूम, जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर लिए 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, और ये हम उगा रहे हैं इस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है। और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे, और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वियर।
0: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो हैं, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये?
1: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है हमें, हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं, तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग। तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं, तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए, हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है, और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, देयर आर पार्ट्स दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच हैज इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज। तो जब हम ये बना लेंगे एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा, एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी, जो कि अभी नहीं है।
0: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
1: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपेंस, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को, और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है।
0: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होते हैं उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
1: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर, उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं। तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंट्री लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं, तो वो डिग्रीज होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितने दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए।
0: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपैरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पे भी यूज होता है क्या, वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्री वेस्ट से ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रही हैं?
1: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव वियर है, विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि

0: टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, सीट कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसी कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में, डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
1: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्री वेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज़रूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो वो क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं जिससे कि AQI बढ़ता है और पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
1: यहाँ पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं?
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं, बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं, तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं जो कि हम इन सब का एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है, उसको बना के फिर उस पर हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं।
1: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी?
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है, इस पूरे प्रोडक्शन में भी हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस में हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं जिसके तहत वो पॉल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है, जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है, तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं, तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा हम UN के SDG गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उससे भी अलाइंड हैं, 12 हमारा मेजर गोल है विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड हैं, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से 12 गोल्स से अलाइंड हैं, लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी ये जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहाँ तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रही हैं मशरूम माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी?
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में एक रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वियर जो है वो यूज़ होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन

0: और बढ़ाएंगे जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं, जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पग आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें।
1: जैसे मशरूम माइसीलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक। लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है, उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है, हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें, तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करे और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके, जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सकें जहाँ पे सभी थ्राइव कर रहे हों साथ में।
1: अभी तो ये लैब स्केल पे है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे? और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
0: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हुई है, जैसे हमारा जो फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो इसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला इटरेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का। जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे एंड वी विल सेल आउट दैट। और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, और बिकॉज इट इज सस्टेनेबल, जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है, क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर। तो जितना भी मार्केट है, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है। सिंथेटिक से पीपल वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स, और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो क्योंकि ये 360 डिग्री इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टूवर्ड्स दैट। उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो इसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे, और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे, एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल। हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी, और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी, जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें, क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी।
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है,
0: वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं। तो भारत सरकार की ये जितनी नीतियां हैं आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, और जो उन्होंने आईडेक्स इस्टेब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है, ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए। तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीतें, वो इवन ग्रांट्स देती हैं, अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है। तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के अंदर, वो भारत सरकार की ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं। हमें काफ़ी सहायता, आर्थिक सहायता मिली है उससे। इवन हम जो इंक्यूबेटेड हैं अभी IIT कानपुर में, उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है। ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम आईडेक्स के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर IIT कानपुर को बना पाए, जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है। उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज़्यादा सहायता मिल रही है, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं R&D बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर रिलाई करता है, और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी। तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमने करवाए हैं, वो आधे से ज़्यादा हमें IIT कानपुर से करवाए हैं, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है टाइम अवेलेबिलिटी में भी, और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा। तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है, लेकिन आगे चल के भी, क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर लें, पहला MVP बना लें, तब तक विच इज़ मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप, जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा, तब तक हम चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले। तो हम और भी चीज़ों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा, उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं।
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा हम एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है, फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए। तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइकलिंग इट और रिसाइकलिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें, वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपए किलो के बीच में, अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट। तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं, तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे।
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही हैं भैया?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहाँ कोई और ना जा पा रहा हो। तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो, और अभी जितने भी सिंथेटिक चीज़ों से चीज़ें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं, और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज़ में। और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स, जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है, उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे, हमारा USP यही है। और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुँच सकें जहाँ पे हम दिखा सकें कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है।
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है, जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूँगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज़ करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी इस सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही है कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और विशन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना, और इस चर्चा को जो चूँकि हमने कार्यक्रम जो उठाया था वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे इस पते पर। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फ़ोन नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ई बेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुनते हैं अपन विधा चेतावनी को और इन चेतावनियों को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। तो दोस्तों, आओ देर न करे तो भाई अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में सुनते हैं इन भैया की गाई भाई चेतावनी को। ये गा रहे हैं राजू कुशवाहा जी।
1: करत कर...

0: बिल्कुल दोस्तों, कि करत करत कड़ गई जिंदगानी के माया किताऊ धरी ना दिखानी। देखो दोस्तों, जब कितनी प्यारी चेतावनी अपन सब जनन ने सुनी है, इस चेतावनी को आनंद लव है। इस चेतावनी को गा रहे तो भैया राजू कुशवाहा जी। अब दोस्तों, इनकी चेतावनी के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई चेतावनी अनखो। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
1: अरे भजन में बिना

0: बिल्कुल दोस्तों, भजन बिना खुदाई उम्र गया सारी। देखो कितनी प्यारी जा चेतावनी अपन सुन सब जन ने सुनी है, और ये चेतावनी को आनंद लो। ये चेतावनी क्यों गा रहे थे भैया धनी राम वर्मा जी? अब दोस्तों आओ सुनते हैं एक क्रम में अगले साथियों की चेतावनी को।
1: सारी उम्र।

बिल्कुल दोस्तों, आय हाय ओए होए कर लो भजन ध्यान से। देखो कितनी बढ़िया जो चेतावनी सुनी है भैया जी ने, गाई है बाल मुकुंद जी ने। अब दोस्तों बाल मुकुंद भैया जी की इस चेतावनी के बाद आप फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाउ थे और कार्यक्रम में सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई चेतावनी को। सो आज दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

कितनी बढ़िया जो चेतावनी भैया बिशन भैया ने गा के सुनाई है, और ये चेतावनी में बिल्कुल आनंद आ गया है। अब दोस्तों यही क्रम में अपन फिर से सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई चेतावनी को। सो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, हाँ को हो गाड़ी बान, समर के गाड़ी हाँ को हो गाड़ी बान। देखो दोस्तों, कितनी प्यारी जा चेतावनी अपन सब जनन ने सुनी, इस चेतावनी को आनंद लो। अब दोस्तों आओ, एक क्रम में हम आपको बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम विधा बुंदेली से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय होगा है। सो हमें दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ए कार्यक्रम में ए बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: जे देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी कह न
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो।

ना, कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले, हंसे हंसे।

तो चाल चले मतवारी, नई फैशन की पे

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे जैसे ही फरमाइशी कार्यक्रम शुरू होता है, हमारे साथी जो नमस्कार हो जाते हैं, एक साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी भैया, योगेश जांगड़े, छत्तीसगढ़

0: आवाज आ रही है?
1: जी, कुछ अजीब सा आवाज आया।
0: हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर?
1: योगेश छत्तीसगढ़
0: जी सर, कैसे हैं आप?
1: से बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आज फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: फिर इतिहास से कोई भी गीत सुनवा देंगे।
0: इतिहास फिल्म का गीत?
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं इतिहास फिल्म का भी। इससे पहले कुछ जान लेते हैं, और क्या क्या चल रहा है सर आपके यहाँ?
1: बढ़िया जी। अभी बारिश वारिश सब होने लग गया है।
0: अच्छी हो रही है?
1: हाँ जी,
0: चलिए बढ़िया है। आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत सर,
1: धन्यवाद।
0: और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर?
1: जी बस, बाकी सब ठीक है भैया। बढ़िया लगता है आप लोगों से जुड़ना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है आप लोगों से जुड़कर।
1: जी
0: नमस्कार।

0: से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते सर जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कळमनुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात करे सर जी।
0: जी नमस्कार ठाकुर साहब, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत ही बढ़िया है। अभी आराम से भैंसा चरा रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश हो गई, शनिवार सोमवार मंगलवार आज बुधवार बहुत दिन से ऐसी बहुत ही बढ़िया बारिश हो गई। खेत में से पानी थोड़ा थोड़ा बह रहा है, एकदम हमारे को जान में जान आ गई, अच्छा लग रहा है।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुशखबरी है ये किसानों के लिए, खास तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी है सर।
1: हाँ सर जी, क्योंकि हमारे जो सोयाबीन तुअर किसी के भी कपास सोया और हल्दी गन्ना सभी के लिए अच्छा हुआ एकदम। किसी को आप कोई टेंशन नहीं, मोटर लगाने की बोरवेल की मोटर हो या कौन सा पंप लगाने की जरूरत नहीं, इतना पानी होगा आप।
0: चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे
1: यार? सर जी शब्बीर कुमार की आवाज है और एक गीत है साथी हो जीवन साथी साथ निभाना भूला न जाना, ऐसा कुछ सब गीत है।
0: ये बाजी फिल्म का 1984 में फिल्म आई थी।
1: हाँ हाँ शब्बीर कुमार की आवाज है सर जी।
0: जी आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये।
1: थैंक यू, धन्यवाद सर जी।

0: से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी सतीश भैया, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी बिल्कुल बढ़िया सर जी, और बस दो लाइन के साथ कार्यक्रम से जुड़ा हूँ सर आज।
0: स्वागत है स्वागत है, सुनाइए।
1: दर्द दे गया एतवार तेरा, अब बर्दाश्त नहीं है झूठा प्यार तेरा। टूटे वादों की खामोशी में अब बस याद आता है झूठा इकरार तेरा। कहते थे साथ निभाएंगे लेकिन ये तो था कारोबार तेरा। आज कसूर पूछता है सागर क्यों सूखा है बाहर तेरा।
0: अरे वाह, बहुत ही सुंदर लाइन है आपने ये प्रस्तुत की है, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बताइए आप कौन सा गीत सुनाएंगे आज?
1: सर जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है कामचोर और गीत के बोल रहेंगे सर जी तुझे संग प्रीत लगाई सजना, ये वाला गीत सुनना है सर जी, और कुछ दोस्तों को डेडिकेट भी करना है इसका।
0: स्वागत है,
1: सर सबसे पहले तो आपको
0: धन्यवाद।
1: और हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं सर मथुरा वृंदावन से, राजू लवानिया जी हैं सर आगरा उत्तर प्रदेश से, महेंद्र सिंह राणा जी हैं मथुरा वृंदावन से, और हमारे टेकचंद अग्रवाल जी हैं सर परासिया छिंदवाड़ा से, और सर जो जो लाइव कार्यक्रम से जुड़े सर सबको डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनिए पसंद का ये गीत सर
1: जी। थैंक यू सर।

0: नमस्कार। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार। हेलो
1: वर्षा दीदी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है।
0: अच्छा, अभी मिलने लगी है
1: जी। अब आई आवाज ठीक। अब लाइन पे लीजिए।
0: लाइन पर ही है आप।
1: ओके, आदरणीय वर्षा दीदी, शारदा नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार शारदा प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। काफी दिनों के पश्चात आपसे वार्तालाप हो रही है। हम तो प्रतीक्षा करते करते थक गए कि वर्षा प्रारंभ हो गई है, लेकिन हमारी वर्षा दीदी जो है ना अभी साक्षात प्रकट नहीं आ रही है।
0: कोई बात नहीं शारदा प्रसाद जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं तो दीदी बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और ओरछा बुंदेलखंड से जुड़ा रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। और आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति से राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसे हैं?
0: मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम बहुत बढ़िया हूँ। तो बताइए शारदा प्रसाद जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आषाढ़ का महीना है, वर्षा ऋतु चल रही है। 22 जुलाई का दिन महान गायक मुकेश साहब की जन्म जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है छलिया और गीत वो है दम दम बिगड़ बिगा मौसम बिगा बिगा दिन पे मैं तो गिरा है अल्लाह।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गीत आपने बताया है। तो शारदा प्रसाद जी, एक सवाल था हमारे मन में कि अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में क्या आता है?
1: प्रदर्शन जो उनके अपने विचार होते हैं, जो प्रदर्शन में सहयोग करते हैं और कुछ लोगों को कहना है ये सही है, कुछ लोग कहते हैं गलत करते हैं, सिर्फ राजनीति है। और कुछ लोग ये कहते हैं ये छात्राओं को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। वास्तव में क्या है हम सच्चाई से जानते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यदि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, गलती कहाँ है, किसने किया है, किसने धोखाधड़ी किया है और किसने लीक आउट किया है पेपर वगैरह के। ये सब चीजें तो बहुत मायने रखती हैं कि अच्छा खासा जो एक पढ़ा लिखा छात्र है जो साल भर मेहनत करता है वो वंचित रह जाता है, और जो मतलब बैकडोर एंट्री करता है वो आ जाता है। तो ये सब चीजों को नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल शारदा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में अपनी राय दी
1: जी।

0: श्रोताओं नमस्कार, हमारे साथ हमारे एक और साथी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार, महेश रैकवार जी पोहा से। महेश जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार वर्षा जी, नमस्कार।
0: कैसे हैं महेश जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बस बढ़िया है, गर्मी पड़ रही, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही, मगर आज तो नहीं हो रही।
0: अच्छा आज नहीं हो रही।
1: हाँ लेकिन आपका नाम बरसा है तो खूब बरस रही।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए महेश जी, क्या सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: आज हमको कोई बरसात के गीत सुना दीजिए भाई। ऐसा
0: बिल्कुल जरूर सुनवा देंगे, लेकिन गीत के बोल आपको बताने पड़ेंगे।
1: हाँ तो कोई सुनवा दीजिए, बरसात के दिन आए अब तो अच्छी बात है।
0: बरसात के दिन आ गए?
1: हाँ बरसात के दिन आए तो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल हम आपको जरूर सुनवाएंगे। और महेश जी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? दिल्ली जंतर मंतर पर, हेलो आप सुन पा रहे हैं?
1: हाँ जी।
0: दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है छात्रों के द्वारा, उसमें आपका क्या कहना है?
1: जी मैम मेरे को समझ में नहीं आया, बस अभी मेरी आवाज नेट पे कट रही है तो अभी आवाज साफ नहीं आ पा रही।
0: चलिए कोई बात नहीं, आइए हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: पीता पियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे साथ हमारे अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो वैशा दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दीनदयाल कुशवाहा सरसेड हरपालपुर से बोल रहे हैं।
0: दीनदयाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, बस
0: बारिश वारिश ठीक हो रही?
1: हाँ, बारिश तो हो गई।
0: हाँ, कहाँ लगाओ खेतन में? ही बार
1: खेतन में मूंगफली है, उड़दा है और सोयाबीन है, उसमें दवाई छिड़काव चल रहा है।
0: अच्छा, तो अभी जैसे पानी कम कम गिर रहा हो और ज्यादा नहीं गिर रहा है, तो आपकी फसल को यानी मूंगफली की फसल को कोई नुकसान तो नहीं है ऐसे पानी?
1: बिल्कुल नुकसान नहीं है, बहुत कोई कोई के लायक है जी में, के दवाई भी कंचन जा रही और उनकी बाढ़ भी चल रही है मूंगफली की।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा दीनदयाल जी, हम आपको एक और बात बतावो चाहते हैं।
1: हाँ
0: जो मौसम आधारित जानकारी होती ही और दवाई छिड़कने की अगर आपने बात करी, तो फसल को कौन दिना दवाई छिड़कने है या का करने है, उसके बारे में भी हम जानकारी दे देंगे रेडियो के इंस्टाग्राम से।
1: हाँ
0: तो अगर आप एंड्रॉइड फोन यानी टच वाला फोन चलाते हैं

0: इंस्टाग्राम है वो, तो आप उस पे जाके भी सूचना सुन सकत हैंगे कि ये मौसम में फसल में का करने हैं वो, कैसी का दवाइयां डालने हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुने है, वही के अनुसार भी दवाई डाया वे का शुरू हुआ था भाई।
0: अच्छा, ठीक है, तो आज बताओ कौन सा गीत आपको सुनना है।
1: आज काई के हम वो आज के काई के हम में गीत है वो है जो वो छतरी ना उड़ ऐसे बरसात में ऐसा गीत है कुछ।
0: छतरी ना खोल बरसात में।
1: हाँ उड़ जाएगी ऐसा कुछ गीत है।
0: बिल्कुल, उड़ जाए छतरी, कहे कि हवा अगर चले तो छतरी भी उड़ सकत
1: बिल्कुल
0: हैगी।
1: बिल्कुल
0: तो बिल्कुल दीनदयाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: सोमवार का दिन के लिए क्या हो गया था, कुछ गड़बड़ी हो गई थी।
0: अच्छा, सोमवार के दिन थोड़ा सा कहा है कि जब अपने तो ज्यादा बारिश होत हैगी
1: हाँ
0: तो रेडियो को बंद करने आती, कहे कि रेडियो में जो सिस्टम रखे भी ऐसे रखे कि उनसे बिजली आकर्षित होत हैगी।
1: हाँ वो गाजा जो है
0: हाँ
1: वो डर
0: हाँ
1: रहता है।
0: हाँ तो बहुत ज्यादा डर रहता है, तो उस टाइम पे बारिश हो रही थी, तो हमारे जो
1: हाँ
0: आईटी डिपार्टमेंट के सर हैं उनने बताई कि आप रेडियो को ही समय पे बंद कर दो, फिर उसके बाद चालू कर दियो।
1: ठीक
0: ठीक है, तो दीनदयाल जी, हम सुना थे आपकी पसंद को जो गीत, छतरी ना
1: है
0: खोल
1: नमस्कार
0: बरसात में। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे साथ हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार बहन, प्रणाम।
0: अरे नमस्कार राजू भैया, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, बगीचे में बैठे रेडियो बुंदेलखंड ओरछा का भरपूर मजा ले रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, पूरा आनंद तो आप ही ले रहे हैं।
1: बादल छाए हैं, हो सकता है बारिश हो जाए।
0: अच्छा अच्छा हमारे तो भी बादल छाए हैंगे और उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि बारिश हो जावे।
1: और बहन मूंगफली में दवा भी छिड़क रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, कहूं आपने मूंगफली नहीं खुवाई, लेकिन आपने तो ये गलत बात है।
1: अब 120 दिन का
0: कि हम मूंगफली में दवा छिड़क रहे हैं, फिर जब ओखरवे की बारी आ गई ओखरवा रहे, फिर थ्रेशिंग करवा रहे, सब यही बताते रहते बस हमें।
1: अब तो बहन 120 दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा।
0: नहीं, बहुत तो इंतजार हम करते ही हैंगे।
1: जी जी जी जी जी।
0: चलो तो बताओ फिर कौन सा गीत सुनने आज आपको?
1: बहना जी गीत सुना जी, उसका मूवी का नाम रहेगा फूल। फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम।
0: सलाम, बिल्कुल। तो राजू भैया एक और बात, पहले तो आपने अपना परिचय नहीं दो, वो दे दो।
1: रहता हूँ श्रीरामपुर डेरा में, परछा का किनारा है, करता हूँ बात आपसे, भगवान शंकर का सहारा है। और दो लाइन जल्दी से और कहेंगे। दिल का दिया जलाए बैठे हैं, आपकी आने की आस लगाए बैठे हैं, ना जाने किस रास्ते से आएंगे आप, इसलिए हर रास्ते पर फूल सजाए बैठे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा राजू भैया एक और बात आपसे पूछो चाह रहे हैंगे, काहे कि अपन और बुंदेलखंड से हैं, युवा हैं, सबके बच्चा पढ़ाई भी कर रहे हैंगे, तो अपनों भी फर्ज बनता ही कि ई विषय पे भी तनक मनक बात करवे कि दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है वो छात्रन के द्वारा, उमे आपकी का राय है?

0: अब बहना जी, तो हमारी राय ये है कि जो नेट का पेपर लीक हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो थोड़ा डगमगा रहा है, इसलिए वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। अभी हो सकता है जारी हो या खत्म हो गया हो।
1: नहीं, अभी जारी है वहाँ पे, और जब तक जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो
0: जी
1: इस्तीफा नहीं देंगे, तब

0: प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये चलता रहेगा।
1: जी।
0: चलिए तो राजू भैया, आपने सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत, फूल फूल पे बनी है।
1: जी बहन, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार बरसा बहन जी।
0: नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सुरेश जी बात कर रहे हैं।
1: अरे वाह, बार में पहचान लिया आपने।
0: बिल्कुल, काहे के कछु जने, देखो कछु जने बहन जी कतई, कछु जने बहना कतई है, कछु जने बरसा जी कतई, सो हमें समझ में आ जात के को बोल रहा।
1: अच्छा, काहे से हमने बहुत दिन बाद कॉल लगाई।
0: हाँ, हम भी बहुत दिन बाद आए।
1: अच्छा
0: हम भी बहुत दिन बाद आए हैंगे आज। और हमें तो ऐसा लग रहा होता कि हमारे श्रोता ने जा तो नहीं सोच ली कि वर्षा जी छोड़ के चली गई।
1: अरे नहीं,
0: तनक दूसरे कामन में व्यस्त थे, सो हम का कहते लाइव में नहीं आ पा रहे थे।
1: व्यस्त रहेंगे।
0: हाँ, तो थोड़े सो लाइव में नहीं आ पा रहे थे, बाकी कार्यक्रम में हते। तो बताओ फिर अपना परिचय देत भाई, गाना कौन सा सुनने हैं आपको?
1: तो फिर मतलब वो अभी तो ऑफ एयर है कि ऑन एयर है?
0: नहीं, ऑन एयर है आप।
1: अच्छा, ऑन एयर। तो हम ग्राम पोस्ट अजनर जिला महोगा उत्तर प्रदेश से सुरेश कुमार सैनी बोल रहे।
0: जी सुरेश भाई, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज आप एक गीत सुनवा दो, वो मेरे देश को अच्छा गीत है, पुराना भी सुरेश सुना था, देश के ऊपर है।
0: तो देश के ऊपर तो बहुत सारे,
1: क्योंकि जंतर मंतर पे जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है
0: जी,
1: उसी से मिलता जुलता अभी मुझे अच्छा गीत याद आ रहा है, मेरे देश को नेता खा गए, ऐसा कुछ गीत है।
0: मेरे देश को नेता खा गए, देख रहे अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, इस विषय पर तो हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारी मांगे हैं वो उनको मांगे पूरी करने चाहिए।
0: बिल्कुल, ये गाना जो
1: बार
0: आपने
1: बार
0: बताया
1: बच्चे
0: है,
1: देखो
0: सर, जो गाना आपने
1: पेपर देते हैं, मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, बहुत कष्ट होता है फिर।
0: बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है और आज भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लाठीचार्ज उनके ऊपर की जा रही है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भारत के किसी भी कोने में हों, एक आवाज हम उन छात्र छात्राओं के लिए जरूर लगाएं जो जंतर मंतर पर जाकर अपने शरीर पर लाठियां खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, और लाठियां भी ऐसी जिनमें कीले लगी हुई हैं, ऐसा दृश्य वहां का दिखाया जा रहा है।
1: जी, जी।
0: तो बहुत अच्छी बात है। और जो गीत आपने बताया है, उस वो गीत है देश को, देश को

0: नेता ना मिले जो आप भी डूबे हो जनता को भी
1: हाँ
0: डूबे।
1: हाँ हाँ हाँ बस यही गीत
0: जी बिल्कुल, बहुत पुराना गीत है ये, और आइए हम
1: जी।
0: सभी सुनते हैं इस गीत को।
1: नमस्कार भाई।

0: से गया तो फिर उसके बाद तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन
1: तारा बोले
0: तुन तुन क्या

0: करता हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के बीच में और हमारे साथ हमारे अगले श्रोता हैं। हेलो, नमस्कार।
1: 210 ले रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी रॉक स्टार टेलर अजनर महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं जी।
0: रॉक स्टार टेलर?
1: जी जी।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा नाम है ये तो।
1: जी हाँ, धन्यवाद
0: जी। तो बताइए रॉक स्टार जी, रेडियो बुंदेलखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: बस आपसे निवेदन ये है कि गीत सुनवाए तो गीत को पूरा होने दें, क्योंकि आप नहीं होने देते हैं पूरा, फिर मजा नहीं आता है।
0: अच्छा, तो अगर आपकी बात हमने मान ली।
1: हाँ।
0: और गीत पूरा होने में, क्योंकि 4 या 5 मिनट का पूरा गीत होता है।
1: हाँ।
0: तो महोदय जी, इस बीच में काफी सारे कॉल्स आ जाते हैं, अगर हम उन फोन को नहीं उठाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा?
1: नहीं, आप एक काम करिए, उसका मैं आपको उपाय बता दे रहा हूँ।
0: बताइए।
1: आप कॉल उठा लें, उनसे कहें

0: अम्बेडकर है, बस
1: नहीं तो हमारे पास टाइम
0: बिल्कुल। नहीं
1: क्योंकि
0: नहीं अन्य केंद्रों पे ऐसा होता है, जैसे
1: आप
0: लाइव अभी ये बुंदेली में भी लाइव चलता है उसमें भी ऐसा होता है, भोपाल भी लाइव चलता है उसमें भी यही होता है। आपकी कॉल रिसीव कर ली जाएगी, आप कहेंगे आपको लाइन पे लेंगे हम, बस
1: महोदय
0: गाना
1: आप
0: खत्म
1: जो
0: हो
1: कह
0: जाएगा,
1: रहे हैं
0: ऐसा
1: एकदम
0: करें वो
1: सही
0: अच्छा
1: कह
0: रहेगा।
1: रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। हमारे पास
0: जी
1: क्योंकि 1 घंटे का ही टाइम होता है और
0: हाँ
1: हम इस 1 घंटे में फिर ज़्यादा कॉल नहीं ले पाएंगे, और क्योंकि ऐसा हमने किया भी है, आप शायद अभी नए जुड़े हैं,
0: नहीं
1: हमने
0: नहीं नया नहीं जुड़ा हूँ मैं, कई बार कॉल लगा चुका हूँ, मेरी आपसे बात नहीं हुई, कुशवाहा जी थे उनसे बात होती रही एक दो बार।
1: हाँ तो आपने एक दो बार ही किया होगा, और
0: हाँ
1: लाइव पिछले 2017 से ये
0: अच्छा
1: चल रहा है, तो
0: अच्छा
1: हमने ऐसा करके भी देखा है, तो काफ़ी सारे श्रोताओं की शिकायत रही है इसमें कि आप गाने को ज़्यादा ना बजाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले पाएं,
0: अच्छा
1: तो इस वजह से हमें वो करना पड़ा। लेकिन अभी आप ऐसा कह रहे हैं तो हम ये भी करके देखेंगे, और ये करके देखा तो फिर हमारे पास बहुत से बहुत हम सिर्फ 7-8 कॉल ही ले पाएंगे, तो बाकी जो हमारे श्रोता हैं वो ग्रुप पर फिर मैसेज करेंगे कि आपने पूरे पूरे गाने सुनाए और हमारा नंबर ही नहीं आ पाया, तो
0: अच्छा
1: वो सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं।
0: अच्छा चलो देखो इस बारे में जैसे आप कह रहे हैं आप ये भी है, लेकिन श्रोताओं को ये भी तो समझना चाहिए जो कह रहे हैं वो लोग,
1: हाँ
0: उनको थोड़ा ये समझना चाहिए कि भाई कोई सा भी गीत है अगर थोड़ा बच जाए कम से कम कुछ ना हो तो ये कंतरा तो बज ही जाए गीत का।
1: बिल्कुल, इस पर हम और भी हमारे जो श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनकी भी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक श्रोता के कहने से अपन चेंज नहीं कर पाएंगे।
0: नहीं, ये तो आपकी बात सही है,
1: हाँ
0: ऐसा थोड़ी अगर हम ही कहेंगे तो अगर कुछ और लोग कहें ऐसा तो हो
1: जी,
0: सकता है।
1: तो अगर सभी की सहमति इसमें होगी तो हम जरूर अगली बार से ऐसा ही करेंगे। तो बताइए रॉक स्टार जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनेंगे?
0: आज आप गाना सुनवा दीजिए, मुकेश जी की आवाज में है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं।
1: बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं,
0: जी
1: बिल्कुल रॉक स्टार जी हम आपको सुनवा रहे हैं। आपका नाम कैसे पड़ा ये रॉक स्टार? आपके जो शॉप है उसका नाम है,
0: हाँ शॉप का ही नाम है मेरे। हाँ
1: आपका नाम विनोद है?
0: जी
1: चलिए बहुत अच्छा लगा विनोद जी आपसे बात करके, और ऐसे ही
0: जी जी
1: सजग श्रोताओं की जरूरत होती है जो समय समय पर अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। जो आपने
0: जी
1: सुझाव
0: हाँ
1: दिया है बहुत अच्छा सुझाव है, हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, बस हमारे जो और श्रोता हैं वो भी अगर ऐसा चाहते हैं तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: चलिए हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, नमस्कार।
0: धन्यवाद।

संगम होगा के नहीं। अरे बोल रहा।

0: श्रोताओं नमस्कार। हमारे बीच में हमारे एक और साथी जुड़ गए हैं। हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो,
0: हेलो।
1: टेक चंद अग्रवाल बोल रहा हूँ मैडम
0: टेक चंद्र जी।
1: जी।
0: टेक चंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से
0: छिंदवाड़ा से।
1: जी।
0: बताइए टेक चंद जी, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है आपके यहाँ के?
1: हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया है, आप सबकी दुआओं से।
1: मौसम तो मैडम रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है
0: जी हाँ, यहाँ भी हो रही है।
1: जी।
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना सुनेंगे इस रिमझिम बारिश में?
1: आखिर फिल्म का सुनवा दीजिएगा, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी
0: मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
1: जी।
0: तो हमें लगता है कि ऐसी बारिश में हमारी पुरानी मोहब्बत याद आ जाती
1: हाँ जी, बिल्कुल,
0: है।
1: क्योंकि अब सीनियर सिटीजन
0: अरे
1: है,
0: कोई
1: याद
0: बात
1: ही
0: नहीं।
1: सीनियर सीनियर सिटीजन
0: दिल तो बच्चा है। चलिए
1: तो
0: बहुत
1: याद
0: अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आइए सुनते हैं हम आपकी पसंद का ये प्यारा सा
1: जी।
0: गीत।
1: शुक्रिया जी।
0: जी शुक्रिया।
2: आई कैन गो

0: बताऊं, हमारे साथ एक और हमारे साथी जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार जी,
0: नमस्कार
1: यूपी जिला झांसी ग्राम अठौंदना से बात कर रहा हूँ,
0: जी।
1: प्रीतम
0: प्रीतम
1: सिंह यादव
0: जी, जी प्रीतम जी, कैसे हैं आप?
1: जी। बढ़िया है।
0: और फसल वसल ठीक ठाक है आपकी?
1: हाँ, फसल फसल बेबगई बढ़िया है। कल से बारिश भी अच्छी हो गई।
0: चलो तो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है कि जाता हूँ। बताओ फिर प्रीतम जी, कौन सा गाना सुनना है आपको आज?
1: गाना सुनना है वो तू जब जब मुझको पुकारे, वो ऐसा ही कुछ है।
0: मैं चली आऊँ यमुना किनारे।
1: हाँ
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे आपकी पसंद को जो गीत। और प्रीतम जी बताओ, जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है वो इसको लेके आपका क्या विचार थेंगे?
1: आवाज कट रही मैडम।
0: अच्छा, आवाज कट रही।
1: अब आई आवाज कही।
0: चलो तो कोई बात नहीं, हमें लगा था कि आप इस विषय पे हर को नहीं बोलवा चाह रहा है वो तो
1: अरे
0: कोई बात
1: आवाज
0: नहीं,
1: कट
0: सबको
1: कट
0: अपना
1: जा
0: अपना
1: रही
0: मत
1: थी
0: है।
1: तो वो प्रॉब्लम आ रही।
0: नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। एक मंच है जो, और ये मंच पे
1: ठीक
0: हर कोई सहमत नहीं होता ही बोलवे के
1: ठीक है
0: लायक
1: मैडम
0: जी नमस्कार।
1: जी, नमस्कार।

0: नमस्कार। हेलो फरमाइश में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो बुआ जी, नमस्कार।
0: बुआ जी। हेलो
1: हेलो दीदी। जी
0: जी, आपने बुआ जी बोला क्यों?
1: जी जी
0: हेलो,
1: हेलो
0: क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे बुआ जी क्यों बोला?
1: क्या पहले तो हम कहा करते थे बुआ जी राजू भाई साहब के संग में।
0: अच्छा, चलिए। कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
1: अनूप कुमार गिरा।

0: प्रयागराज, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ बहन जी।
1: जी, आप सही बोले हैं। आप तो आप क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं जहां पर आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो
0: जी
1: कृपया हम आपसे निवेदन करेंगे कि रिश्तों का वो ना करें आप,
0: जी
1: तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
0: जी
1: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
0: जाते हो परदेस पिया, जाते ही कत लिखना।
1: कौन जा रहा है?
0: कोई नहीं।
1: अच्छा, कोई जा नहीं रहा है। हमें लगा शायद
0: ये
1: कोई जा रहा हो, इसलिए आपने इस गाने का चुनाव किया।
0: तो गीत है बहन जी।
1: अच्छा, चलिए दानुप जी, आपको सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी
1: नमस्कार।
0: जी नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार वर्षा जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी हरविलास जी, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से है।
0: बहुत बढ़िया। और हम चाहते हैं कि हमारी दुआ और हमारे सभी श्रोताओं की दुआ भी ऐसे ही बनी रहे और आप और भी अच्छे रहें।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
0: जी बताइए तो हरविलास जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है आक्रमण।
0: आक्रमण?
1: ये
0: आक्रमण तो इस समय
1: ये
0: दिल्ली में
1: मोस्ट
0: चल रहा है।
1: जी चल रहा है गीत, तो
0: हाँ।
1: दूसरा बता देते हैं।
0: नहीं, आप गीत बताइए, आक्रमण का कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: ये मौसम आया कितने सालों में, आज आप खो जाए ख्वाबों ख्यालों में,
0: ये मौसम आया कितने
1: आया है
0: सालों में?
1: कितने सालों में।
0: बिल्कुल, हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। और बताइए हरबिलास जी।
1: बढ़िया है, बारिश की मेहरबानी हो गई, बोनी हो चुकी है, फसल भी अच्छी है। बोनी के बाद भी जल हो गया खूब अच्छा पानी किसानों।
0: तो फसल के लिए अच्छा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातचीत है। और आइए हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत हरविलास जी।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और जिसमें आपने सभी ने अपनी अपनी पसंद के गीतों को सुना। और आइए, अब हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी अरे बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

पानी को रखो संभाल जो चाहो जिंदगानी में। कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।

0: देखें आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेक।

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदोबासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए। कहे नाथ काशी सुनो हिंदोबासी मई हो या जून।

0: गई अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है
1: वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं।
0: अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

और कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी